0: ya es víbora.
1: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
2: Hey, yo, G-Funk.

वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी बाल पुने दे चावां वर्गी ते सज्जन दियां खुलियां बावां वर्गी खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी आओ इस दी शान वधाईए इहदे सोले रल में लगाईए क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहीदा है। बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहीदा है। अपनी पछाण वाला दीवा ना बजा दिओ वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भला दिओ वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भला दिओ।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1

श्री वाहे गुरु साहेबा जी, हर जेठ जड़न दा लुड़िया, जिस अगा सब निवाना, हर सज्जन दावन लग्या, किसाना दे बन्ना, हर जेठ जड़न दा लुड़िया, जिस अगा सब निवाना, हर सज्जन दावन लग्या, किसान दे बन्ना। माणक मोती नाम प्रावा, उन लगा नाही साना, रंग सबे नारायण, जेते मान पावन, जो हर लोड़े सो करे, सोए जी कराना, जो प्रभ कीते आपने, से कहिया धन, आपन लिया जे मिला, बिछड़ क्यों रवाना, साधु संग प्राप्त, नानक रंग मनाना, हर जेठ नंगीला तिस तने, जिसका भाग मथाना, साधु संग प्राप्त, नानक रंग मनाना, हर जेठ नंगीला तिस तने, जिसका भाग मथाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर जेठ जड़न दा लोड़िया, जिस अगा सब निवाना, हर सज्जन दावन लग्या,

दीदी मूवी बनवान ले या रिंग सेरेमनी ले वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ले याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416 930 1251 416 930 1251

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ओए ट्रक काला लिया, जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां, की करा
3: मैं? सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप, PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे बी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं, 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर खास प्रबंध भी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहंदे हो,
3: कॉल करो जे एन गैरी नू
5: 9054595533
3: 9054595533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो, इना कोल ले।

गोरहाथ तरियो मेरा माथा जन्म जन्म के कैल बैख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरे माना भज राम नाम सब अर्थ गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया

तन साधु चरण ना सेवे कबहु, तन सब जन्म अकथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलियो जन्म सनाथा। मोकाओ कीजा दास, दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजा, जन नानक चलह मिलंथा।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। Summit Realty Expert।
2: पंजाबी लहरा या चलो AM 530 नू दुनिया दे किसी भी कोने दे विच सुनन दे लई आज ही डाउनलोड करो पंजाबी लहरा दी ऐप PUNJABILEHRAN। जे तुसी साडी ऐप डाउनलोड कर चुके हो ता उस नू अपडेट भी जरूर करो।
3: ओकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तो करवांदा यार?
4: मैं कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
3: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
4: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
5: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना।

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो, इना कोले

हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

आज खूबसूरत स्वेदा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्कन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकेंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सन सुन रहे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरभाओ निरवैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का पाठ रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुम चलते रहोगे। एक बार फिर तो सफर के उपर जिते बहुत खूबसूरत पड़ा ने जिंदगी दे, रोशनी जिते रस्ते दिखा रही है, तुम चलते जा रहे हो। नवी चीज़ों वाल चलो, नवे युग जड़े शुरू हो चुके ने, नवी गलबात वाल, नवे भरोसे वाल चलना शुरू कर सकते हो। और इस समय तुम ए एम 530 के उत्ते अमनदीप सिंह बैनीपाल के नाल मुखा देवो। तकरीबन जो तुहाडा 15 साल प्लस का समा ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर के मैं हो चुके हैं, और हर रोज़ कुछ नवी गलबात जिते पॉजिटिव एनर्जी की गल करदा, उत्थे हमेशा असं गल करते हैं चढ़दी कला निरभाओ निरवैर, यानी कि मानसिक तौर दे उत्ते तुसी बहुत स्ट्रोंग होवो, ये मेरी दुआ होंदी है। पर स्ट्रोंग होना, चलाक होना, क्लैवर होना ते इंटैलीजेंट होना, ये तीनों अलग अलग चीज़ा ने। ते क्लैवर होना कई बार खाई खोदी होंदी है ते उहदे विच छाल मार दिंदे आप, ते कई बार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंदे उह सॉल्व कर लैंदे जदों तुसी इंटैलीजेंट होंदे हो। सो जिंदगी इंटैलीजेंट होवो। इंटैलीजेंसी कल्ली गूगल दे उत्ते नहीं पई कि गूगल ते प्रेस मार दिता ते लभ गई ते कर लिया। लिटल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। साधारण ते थोड़ी जानकारी रखना खतरनाक हुंदा है, जो कि अज दे युग च हो रहा कि किसी ना गल करके तुसी नाले गूगल दब दिंदे हो कि फलाना शहर किवें आ। वो कहिंदे जे तां गया बस मर गया मुकर गया, दैन तुसी ओ तां मर गया मुकर गया। जिंदगी च मैं एक चीज़ सीखी है जी, प्रैक्टिकली तुसी किसी चीज़ नूं देखिया नहीं, उहनूं अजमाया नहीं, ते उह तुहाडा तजर्बा नहीं बन सकदी। सो तजर्बा प्रैक्टिकल लाइफ है। दूसरा मैं देखिया कि खाली प्रॉफिट्स नूं बिजनेस नहीं कहिंदे, प्रॉफिट्स नूं कामयाबी नहीं कहिंदे, फेल होकर प्रॉफिट्स दे विच जाण नूं कामयाब इंसान कहिंदे ने। एक बार फिर तो बहुत सारे कामयाब इंसान मैंने सुन रहे हैं। स्टूडियोज़ नंबर 905-673-3936 स्टूडियोज़ के घड़ी देते सुनाओ की हाल चाल है। उम्मीद करदा चढ़दी कला निरभाओ निरवैर होंगे। फ्राइडे दी मॉर्निंग है, लोंग वीकेंड आ गया तुहाडी आवाज़ सुननी चाहुंदा एक बार, आ जाओ फिर सारे प्यारियों एक बार चढ़दी कला चढ़दी कला चढ़दी कला कर दी। आपां 905-673-3337 लाइन खाली है, थोड़ी आवाज़ सुनन नूं बड़ा रूह कर दी है, बड़ा चित करदा कि तुसी सारे मिलके एक बार ये आवाज़ च गूंज देवो कि चढ़दी कला। तो वह चढ़दी कला का गुरप्रसाद है जिहड़ा, जिहड़ी वह ब्लैसिंग्स ने बहुत सारे ऐसे कन्ना च पैण जो वीक हो गए फील कर रहे सी, महसूस कर रहे सीगे, वीक है नहीं सीगे, सीगे वह भी उहदी चढ़दी कला का ही पार्ट, पर वह कमज़ोर फील कर रहे सी। यकीन मनो जदों तुसी चढ़दी कला कहने हो ना, तो उदों एक गुरप्रसाद के तौर पर प्रसाद के तौर के उत्ते बाकियों के कन्ना च गूंजता है। 905-673-3337 साढ़े स्टूडियोज़ के नंबर ने, और तुम मैं कॉल कर रहे हो तो थोड़ी आवाज़ मैं सुन रहा। 905-673-3337 चढ़दी कला के शो का आगाज़ कर चुके हैं।

0: रिजल्ट ही नहीं आया।
1: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
2: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 तो 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 तो 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
3: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: असलियत तो उत्थे दिखी है। एक शब्द भी घटिया नहीं बोल सकता, जिवें चौड़ा नहीं मारदा हुंदा किसे भी कंट्री जाके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, उह सब बंद करता, मूंह उड़िया होया सी। ते उन्हां ने शरेआम क्लोज डोर दे विच कहा, जो कि पूरी दुनिया भर दी प्रेस च चलिया गया, कि ताइवान दे मामले च पंगा लिया ते तो ईरान तां सांभ नहीं हुंदा, सानू देखी तू किवें सांभेगा फिर, इदां कहा उन्हां ने। किते तो छोटा जिहा ईरान सांभ नहीं होया, सानू किवें सांभेगा, सोच नहीं पंगा देख के लई साडा, झाड़ के उन्होंने वापस मोड़ दिता। जिहड़े 5-6 प्यादे मस्क मुस्क उन्होंने नाल लैके गया सी, जिहड़े ड्रामे करदे पए सी कि मस्क ते ट्रंप लड़ पए ने आपस च, वह नंगे होकर सामने आ गए ने कि अंदरों इको ने सारे लोग, ये व्यापारी लोग ने, अमरीका लई बहुत वधिया, अमरीका लई बहुत वधिया, अमरीका लई बहुत वधिया। प्लीज़ इस अनपढ़ता चो बाहर निकलो, वह अपने परिवार ते अपने घर ते अपने दोस्तों लई बहुत वधिया, अनपढ़ता चो बाहर निकल के स्टेटमेंट दिया करो। कैनेडा च बैठ के जिहड़े दिंदे वह सिर्फ बयान दिंदा हैगा, जिवें मैं देने शुरू कर देवां कि ब्रैंटन टैक्स फ्री होना चाहिदा है, पर सब दा मैं टुकड़ा कुट्टां टैक्स दे विच, ये सब कुछ हो रहा। फिलहाल फ्राइडे है यार, लॉन्ग वीकेंड है। संतोष जी भी आ चुके हैं। संतोष जी सत श्री अकाल, की हाल चाल ने?
1: सत श्री अकाल अमन जी, बहुत वधिया। सत श्री अकाल सारी रेडियो लिसनर्स नु। अमन जी अज ना मैं एक सवाल लेके आई हां,
0: मैं थोड़ा सवाल पढ़ लिया जी, देख लिया मैं, पूछो जी की सवाल है, मैं जवाब दूंगा पहला, तुसी लिखिया कि तुसी भी जवाब देना। हां जी
1: जी जी बिल्कुल, मेरा सवाल अज दा ए है कि जे तुहानू कदी भी मौका मिले किसे एक इंसान दे नाल बैठ के खाना खान दा, चाहे वह कोई इतिहासिक परसन हो या कोई भी होवे तुहाडी लाइफ च, तुहाडे मन च हैगी गल कि तुहानू मौका मिले ते तुसी किहदे नाल बैठ के खाना खाना पसंद करोगे?
0: सो संतोष दा क्वेश्चन है, मैं ज्यादा सिंपली जो मैंने लिखे पढ़ के पाया कि मेरी इतिहासिक बेचारी वो मैं कह दिंदी है। संतोष दा मतलब है कोई भी तुसी हिस्टोरिकली कोई महान शख्सियत है, यकीन मनो जब मैं संतोष ना गल कर रहा सी, मेरे दिमाग च पता संतोष की चल रहा सी
1: जी,
0: सच्ची कहना पया मेरे दिमाग चलदा सी सरदार भगत सिंह, कि काश मैनू उन्हां दी जूठी रोटी थोड़ी जी मिल जांदी। ओ भगत सिंह जिहड़ा उहदी जेल दे कमरे नूं टॉयलेट नूं साफ करदा सी, जोधा उहदा नां सीगा, माई जोधा कहिंदा हुंदा सी उहनूं, माई जोधा बंदे नूं, उस बंदे नूं मां कहिंदा हुंदा सी। ओह कहिंदा सी भगत सिंह मैनूं मां क्यों कहिंदा हुंदा, कहिंदा जां तां मेरी गंदगी साफ कीती है मेरी मां ने या तूं कीती है। उस आदमी नूं जेल च इन्ना उच्चा चक दिता सी भगत सिंह ने, ये कह के जाण तों पहला कि मैनूं कोई दो रोटियां अपने हाथ नाल बना के खिला देगा, क्योंकि तू साडी सारे दी गंदगी साफ करदा, तो गलियान करदे सी सारे। तो भगत सिंह की इच्छा सी कि मैं दो रोटियां जोधा माई दे हाथ दीआं बणीआं होईआं खाणीआं ने जाण तों पहला। सो मेरे मन च आया मैं कहा भगत सिंह की एक छोटी जी बुरकी मिल जाए जूठी मैनूं, तो मैं थोड़ा चिर बैठ लवां, जस्ट मैं देखी चला तो सुना इस 24 साल के नौजवान को, जिथे अज टिकटॉक दियां पट्टियां हुई कुड़ियां तो टिकटॉक तो इंस्टाग्राम के पट्टे हुए बंदे जान सकन के उधम गोबिंद गदरी बाबे खत्म नहीं होने, भगत सराबे खत्म नहीं होए, अज नहीं होए पर दिख नहीं रहे, आदर्श हो गए ने, क्योंकि इन्हों का मुल खत्म हो गया। और भगत सिंह उन्होंने 24 साल की उम्र के पूरी दुनिया जगा के रख दी सी, तो एक कई इतिहास नहीं पता। मेरा मेरी इच्छा होगी संतोष कि मैं भगत सिंह ना बैठ के खा सका, एक मेरी इच्छा और, एक बंदा एक्स्ट्रा ले सकता?
1: हाँ जी हाँ जी ले लो।
0: एक बंदा एक्स्ट्रा मैं ले सकता, मेरे दादा जी सरार गाही सिंह बेनीपाल, मैं उन्होंने देख नहीं पाया सी, मेरे जन्म तो कुछ महीने पहला चले गए सी। एक मेरी इच्छा कि मैं अपने दादा जी सरार गाही सिंह उन्होंने बैठ के कुछ खा सका, मतलब जे इदा का कुछ पॉसिबिलिटीज हो। सवाल का जवाब है तुहानू सारा जवाब देना पैना संतोष का, 905-673-3337, कि अगर तुहानू संतोष कि मैं मौका मिले,
1: अगर तुहानू मौका मिले किसी भी एक इंसान नाल खाओ,
0: चाहे शाहरुख खान ना खाओ जिन्ना मर्जी खाओ सानू कोई लेन देन नहीं है ना, चाहे क्रिकेटर ना खाओ चाहे ट्रंप ना खाओ सानू कोई लेन देन नहीं,
1: असि कुछ नहीं कहांगे,
0: असि कुछ नहीं कहांगे, सिर्फ सुनना चाहुंदे आ कि तुहाडे मन दे विच की आ, तुहाडे मन चो खंगोल के की कढ़दे हो। वैसे अट भज ली है ते उड़ान भर रही है, 905-673-3337, तुहानू मौका मिले ते तुसी किहदे नाल खाना पसंद करोगे बैठ के, चाहे वह जिउंदे ही ने हुण चाहे तुहाडे नाल नहीं हैगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ?
1: ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ।
0: ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਾ?
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
0: ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, 905-673-3337 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਦੋ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ, 905-673-3337। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? 905-673-3337 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल एनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Last night you went out drinking and you did the right thing. You left the car at home. Thank you. But even though you slept, do you think you're okay to drive? If you drank a lot the night before, you could still be intoxicated. Only time, not a cold shower, a hot coffee, or a big meal can lower your blood alcohol concentration. Plan ahead for your night out and the next morning. You'll be helping to keep our roads safe. A message from SmartServe Ontario and Arrive Alive, Drive Sober.
4: 32, 55, 80.
5: ते 98।
4: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
5: वो काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
6: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
4: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: 32, 55, 80.
2: 93
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowway Drive नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
6: 530. ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗਾ ਮੱਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੌ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵਰਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ

0: Courteous
1: and efficient service, call Narinder Mann, 905-789-1770.
2: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारा लोकी आंदे ने ते हजारा ही जांदे ने पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहंदे ने
3: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहंदे हो तां फिर आज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो
2: कॉल 416-457-3381
3: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है
2: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है
3: हां इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विचो आज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381

करन ले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंग संग है 24 घंटे सतो दिन हुण तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, एता गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: कि तुसी देश विच नवे हो, नेशनल बैंक कैनेडा विच तुहाडे पहले कदम चक्कण विच तुहाडी मदद करन लई इत्थे है। मनी सेंस अनुसार 2025 कैनेडा विच नवे आउण वालियां लई सब तो वधिया बैंक बारे जानो अते नवे आउण वालियां लई सारी बैंकिंग सेवावां दे नाल शुरुआत करो। नेशनल बैंक, कुछ बनाओ।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: Donations to the War Amps have a lasting impact on amputees. Today, your support gives them the artificial limbs and resources they need for everyday activities and learning to live with amputation. Having access to our essential programs helps amputees prepare for tomorrow on their road to independence. The War Amps is committed to improving the quality of life for Canadian amputees, but this wouldn't be possible without you. To learn how your donation helps, visit waramps.ca.